चान प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को कामना को बंदगी एक दो तीन चार पाँच।